0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्मदिन से मृत्यु का दिन अच्छा। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना बेहतर है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है। बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना बेहतर है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के प्रथम 5 पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। उपदेशक कहता है कि सुगंधित द्रव्य और कीमती मरहम से बेहतर है सुनाम, और मौत का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। बच्चे के जन्म की सारी उम्मीदें और खुशियां होने के बावजूद जन्म का दिन भी उपदेशक को मनहूस लगा, क्योंकि बच्चा दुनिया में रोते हुए चीखते हुए पैदा होता है। वह बोलने से पहले अपने आंसुओं से मानो अपने आने वाले दुखों की भविष्यवाणी कर डालता है। श्रोताओं, नवीन व्यवस्थान की दृष्टि से हमारी भावनाएं और उपदेशक की भावनाएं मिलीजुली हैं। मौत का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। एक तरफ मौत का दिन इसलिए शानदार होता है कि हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, हमारा दुख खत्म हो चुका है, हमारी उलझने खत्म हो चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। दूसरी ओर हम इस बात से खुश होते हैं कि ईश्वर ने हमें धरती पर जो जीवन दिया था उसे हम अच्छी तरह से जी पाए, जीवन में हमें जो काम मिला था उसे हम कर पाए, अपने मिशन को भली भांति पूरा कर सके, और जीवन द्वारा हमने इस धरती पर कुछ अच्छा किया और होना भी यही चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, किंतु हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें पूरा करना हमारा धर्म है, क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि सब कुछ बेकार है अपनी जिम्मेदारियों से भागना होगा। आगे उपदेशक 7वें अध्याय के 4थे और 5वें पदों में कहता है, बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना कहीं अधिक उचित है। यहाँ उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मृत्यु एक सच है, वह एक वास्तविकता है, और उससे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। राजा सुलेमान जानता था कि हम मौत को बस नजरअंदाज कर देते हैं या उससे दूर भागना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपदेशक ने खुशी, कामयाबी और समझदारी में जिंदगी का मतलब खोजने की अपनी उम्मीद को ठुकरा दिया था, और अब केवल मृत्यु शेष बची थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह जीवन की एक वास्तविकता है। स्तोत्र ग्रंथ के भजन 90 के 12वें पद में भजनकार कहता है, प्रभु हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए।

और उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के छठवें, सातवें, आठवें और नवें पदों में उपदेशक कहता है, मूर्खों की हंसी वैसी ही होती है जैसी हड़िया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट, यह भी व्यर्थ है। अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। श्रोताओं, सच ही तो है, बेवकूफ की हंसी एक पल के शोरगुल से अधिक और कुछ नहीं होती, जो पीछे भी कुछ खास नहीं छोड़ती, किसी को प्रसन्न नहीं करती। यहाँ उपदेशक ने मूर्खों की हंसी को हड़िया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट जैसा बताया है। चूल्हे पर कड़ाही के नीचे कांटे और सूखी लकड़ी जब जलती है, तब उसकी चरचराने की आवाज जोर जोर से आती है और शीघ्र ही बुझ भी जाती है। इसी के संदर्भ में उपदेशक ने मूर्खों की हंसी को आसानी से बुझने वाली निरूपित किया है। मूर्ख हंसता है, हंसी करता है, मजाक करता है और शोरगुल करता है, बहुत बड़ी आग लगाता है, किंतु उसका कोलाहल कुछ ही पलों में बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। वस्तुतः जीवन की खुशियां भी ऐसी ही होती हैं, वे शोरगुल वाली, दिखावटी और कुछ समय के लिए होती हैं। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप लिखते हैं, उनकी हंसी की तुलना कांटों से भी की जा सकती है, क्योंकि यह नेक इच्छाओं को दबा देती है, जमीर को खरोचती हैं, बुरी और बेकार इच्छाओं के कीड़ों को पनाह देती है। आगे उपदेशक कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा है। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। श्रोताओं, अवश्य ही अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी हद होती है। यह एक समझदार इंसान की समझ को खत्म कर सकता है। वह मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। उपदेशक कहता है कि किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से बेहतर है। इस प्रकार श्रोताओं, सहन शक्ति और सब्र की तारीफ करने वाले दो पदों के बाद उपदेशक हमें बेसब्री से नाराज होने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। दुनियावी सोच के साथ जीने से इंसान आसानी से बेसब्र हो सकता है, नाराज हो सकता है, क्रोध हो जाता है, किंतु क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करना मूर्खों के दिलो दिमाग की उपज है। और फिर उपदेशक 10 से लेकर 12 तक के पदों में प्रज्ञा को मानव की अनमोल विरासत निरूपित करता है। यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे। इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, प्रायः हमारा झुकाव अतीत को याद करने और उस पर रोने धोने का ही रहा है, और सुलेमान इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। वह समझ गया था कि मनुष्य को अक्सर बीता हुआ कल रोमांचक लगता है, और वह कहने लगता है कि वह समय आज के समय से बेहतर था। इसी के खिलाफ उपदेशक चेतावनी देता है, क्योंकि यदि हम केवल अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसके विपरीत वर्तमान की परवाह की जाए, वर्तमान की नींव पक्की की जाए, ताकि भविष्य का महल उस पर खड़ा किया जा सके। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक का परामर्श है कि हम धन का सदुपयोग करें, क्योंकि जीने के लिए धन भी आवश्यक है। प्रज्ञा यानी कि विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिए तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने 7 मई को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाधमदस पॉल रिचर्ड गलाघा से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वैटिकन में हुई यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्थानीय कलीसिया एवं राज्य के बीच संबंधों पर भी ध्यान दिया गया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और नैतिक मुद्दों के संबंध में। अंततः बतलाया गया कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को वैटिकन में वैटिकन पब्लिशिंग हाउस के संपादक के कार्यालय के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी सेवा एवं विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस लाइब्रेरिया एडिट्रिचे वाटिकाना के शतवर्ष जयंती के अवसर पर पोप लियो ने सदस्यों से मुलाकात की, जो 1926 में 1587 में बने पुराने वैटिकन पब्लिशिंग हाउस से अलग हो गया था। संत पापा ने सदस्यों को संबोधित कर कहा, अपने 100 साल के इतिहास में वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने 9 संत पापाओं की सेवा की है और उनकी धर्म शिक्षाओं को दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने हेतु योगदान देने के रूप में फैलाया है। संत पापा ने इस अवसर पर उन्हें 3 बातें बतलाई। पहला, संत पापा ने कहा, किताबें सोचने का मौका देती हैं। डिजिटल जमाने में किताबों का असल रूप हमें सोचने, चिंतन करने और पढ़ाई की भूमिका की याद दिलाता है। पढ़ने से दिमाग को पोषण मिलता है। यह एक जागरूक एवं जानकारी भरी आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है तथा कट्टरपंथ एवं सोच के सहज रास्ते से बचाता है। इसलिए संत पापा ने सभी को किताब पढ़ने की सलाह दी ताकि यह उस छोटी सोच को तोड़ दे जिससे सख्त रवैये और असलियत को कम समझने वाले नजरिए उत्पन्न होते हैं। पोप लियो के अनुसार किताब मिलने जुलने का मौका है। जब हम कोई किताब अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हम उसके लेखक से मिलते हैं, लेकिन साथ ही हम उन लोगों से भी मिलते हैं जिन्होंने इसे हमसे पहले पढ़ा है या जो इसे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस ने हमें मिलने जुलने की संस्कृति को अपनाना सिखाया है। किताब दूसरों के लिए एक पुल है, अच्छी चर्चा का जरिया है और हमारे दृष्टिकोण को बड़ा करने के लिए एक प्रेरणा है। पोप ने अपने संदेश के तीसरे बिंदु के रूप में बतलाया कि हम ख्रिस्तियों के लिए किताबें मसीह के बारे में बताने का एक मौका है। उन्होंने कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी संत की जीवनी या अच्छी तरह से लिखा गया आध्यात्मिक चिंतन दिल को छू सकता है। कुंवारी मरियम को देवदूत के संदेश के समय उन्हें पौत्र धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाया गया है। पादुआ के संत अंतोनी सुसमाचार की खुली किताब पकड़े हुए हैं जिस पर बालक येसु खड़े हैं। हम अक्सर संत अगस्टीन को एक बड़ी किताब के सामने मेज पर बैठे हुए देखते हैं और कभी कभी उनके हाथ में एक दिल होता है जो सच्चाई और दान का प्रतीक है। अतः संत पापा ने सलाह दी कि कुंवारी मरियम और संतों से सीखते हुए हम खुद को ईश्वर के वचन से पोषित करें ताकि यह हमारी सोच और हमारे कामों को आकार दे। संत पापा पॉल षष्ठम के शब्दों में संत पापा ने सदस्यों को आगे बढ़ने, भविष्य के लिए विचार करने और प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में उन्होंने उन्हें उनके कामों के लिए धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी कि वे इसे पूरी लगन एवं जुनून के साथ जारी रखें तथा उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। पोप लियो 14वें 8 मई को अपने पोप बनने के पहले सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स का दौरा कर रहे हैं। इस पर अपनी खुशी एवं शुक्रिया अदा करते हुए पोम्पे के महाधर्माध्यक्ष थोमासो कपूतो ने कहा, संत पापा का अपने पोप बनने के पहले सालगिरह को मनाने के लिए पोम्पे आना एक बहुत खास उपहार है जिसका हम दिल से स्वागत करना चाहते हैं ताकि हमारा समुदाय और भी अधिक रोशनी की जगह, प्रार्थना का स्कूल एवं शांति का किला बन सके। इटली के नेपल्स एवं पोम्पे में पोप के एक दिवसीय दौरे से पहले वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए पोम्पे की रोजरी की माता मरियम के तीर्थस्थल के लिए परमधम पीठ के प्रतिनिधि ने विश्वासियों के जोश एवं खुशी भरे इंतजार के बारे बतलाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि आयोजकों को हर जगह से हिस्सा लेने के लिए अनगिनत आग्रह किए जा रहे हैं।
जिनमें से कई दुर्भाग्य से कम जगह के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। पोप लियो का दौरा मार्च 2015 में पोप फ्रांसिस की पोम्पे की तीर्थ यात्रा के 11 साल बाद हो रहा है। शहर का दौरा करने वाले पहले पोप 1979 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय थे, जो 2003 में फिर से लौटे थे, और पोप बेनेडिक्ट 16वें ने भी 2008 में कुंवारी मरियम की तस्वीर के सामने प्रार्थना की थी। 6 मई को पोप लियो 14वें स्विस गार्ड में भर्ती 28 नए गार्डों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वैटिकन में स्विस गार्ड के कामों के लिए अपना सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। बुधवार को 28 नौजवानों ने स्विस गार्ड में भर्ती होने के लिए वफादारी की शपथ ली। अपने भाषण में गार्ड के कमांडर क्रिस्टोफ ग्राफ ने पोप लियो 14वें की उपस्थिति के लिए अपना आभार जताया और इससे सैन्य दल के साथ उनकी नजदीकी का एक अनमोल संकेत बताया। वैटिकन के संत पॉल सभागार में हुए समारोह के अंत में पोप लियो 14वें ने एकत्रित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने स्विस परिसंघ के अध्यक्ष एवं राजनीतिक नेताओं तथा सेना के दूसरे प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन किया, फिर गार्डों के परिवारों को समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और नए शपथ लेने वालों के प्रति अपना सम्मान एवं आभार जताया। पोप ने जोर दिया कि उन्होंने जो शपथ ली है वह उस वफादारी का सबूत है जो जवानी के जोश, ईश्वर में विश्वास और कलीसिया के लिए प्यार से उत्पन्न हुई है। समारोह के शुरू में कमांडर क्रिस्टोफ ग्राफ ने सेवा की आज की समझ पर चिंतन किया और एक अहम दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि आज इस शब्द को अक्सर एक खोखला शब्द समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है या इसे निजी संतुष्टि में रुकावट के तौर पर भी देखा जाता है। उन्होंने इस समझ के लिए यीशु के शब्दों को आदर्श बतलाया, जो सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। ग्राफ ने कहा कि यह ख्रिस्त उदाहरण घमंड और अधिकार के स्वार्थ इस्तेमाल से बचाता है। जो लोग सेवा करते हैं उन्हें पता रहता है कि वे जिनकी सेवा करते हैं उनसे ऊपर नहीं होते। ग्राफ ने कहा कि स्विस गार्ड्स के लिए इसका मतलब है कि वे पूरी ताकत से संत पिता का साथ दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्मदिन से मृत्यु का दिन अच्छा। दावत के घर जाने की अपेक्षा शोक के घर में प्रवेश करना बेहतर है, क्योंकि मृत्यु हर मनुष्य की गति है। बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना बेहतर है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के प्रथम 5 पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। उपदेशक कहता है कि सुगंधित द्रव्य और कीमती मरहम से बेहतर है सुनाम, और मौत का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। बच्चे के जन्म की सारी उम्मीदें और खुशियां होने के बावजूद जन्म का दिन भी उपदेशक को मनहूस लगा, क्योंकि बच्चा दुनिया में रोते हुए चीखते हुए पैदा होता है। वह बोलने से पहले अपने आंसुओं से मानो अपने आने वाले दुखों की भविष्यवाणी कर डालता है। श्रोताओं, नवीन व्यवस्थान की दृष्टि से हमारी भावनाएं और उपदेशक की भावनाएं मिलीजुली हैं। मौत का दिन जन्म के दिन से बेहतर है। एक तरफ मौत का दिन इसलिए शानदार होता है कि हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, हमारा दुख खत्म हो चुका है, हमारी उलझनें खत्म हो चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। दूसरी ओर हम इस बात से खुश होते हैं कि ईश्वर ने हमें धरती पर जो जीवन दिया था उसे हम अच्छी तरह से जी पाए। जीवन में हमें जो काम मिला था उसे हम कर पाए, अपने मिशन को भलीभांति पूरा कर सके, और जीवन द्वारा हमने इस धरती पर कुछ अच्छा किया, और होना भी यही चाहिए। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, किंतु हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें पूरा करना हमारा धर्म है, क्योंकि सिर्फ यह कह देना कि सब कुछ बेकार है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना होगा। आगे उपदेशक 7वें अध्याय के 4थे और 5वें पदों में कहता है, बुद्धिमानों का हृदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किंतु मूर्खों का हृदय उत्सव के घर को। मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा बुद्धिमान की डांट सुनना कहीं अधिक उचित है। यहाँ उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मृत्यु एक सच है, वह एक वास्तविकता है, और उसे भागने का प्रयास हमारी मूर्खता है। राजा सुलेमान जानता था कि हम मौत को बस नजरअंदाज कर देते हैं या उससे दूर भागना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उपदेशक ने खुशी, कामयाबी और समझदारी में जिंदगी का मतलब खोजने की अपनी उम्मीद को ठुकरा दिया था, और अब केवल मृत्यु शेष बची थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह जीवन की एक वास्तविकता है। स्तोत्र ग्रंथ के भजन 90 के 12वें पद में भजनकार कहता है, प्रभु हमें जीवन के क्षण भंगुरता सिखा, जिससे हम में सद्बुद्धि आ जाए।

और उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के छठवें, सातवें, आठवें और नवें पदों में उपदेशक कहता है, मूर्खों की हंसी वैसी ही होती है जैसी हड़िया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट, यह भी व्यर्थ है। अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। श्रोताओ, सच ही तो है, बेवकूफ की हंसी एक पल के शोरगुल से अधिक और कुछ नहीं होती, जो पीछे भी कुछ खास नहीं छोड़ती, किसी को प्रसन्न नहीं करती। यहां उपदेशक ने मूर्खों की हंसी को हड़िया के नीचे लकड़ियों की चरचराहट जैसा बताया है। चूल्हे पर कड़ाही के नीचे कांटे और सूखी लकड़ी जब जलती है, तब उसके चरचराने की आवाज जोर जोर से आती है और शीघ्र ही बुझ भी जाती है। इसी के संदर्भ में उपदेशक ने मूर्खों की हंसी को आसानी से बुझने वाली निरूपित किया है। मूर्ख हंसता है, हंसी करता है, मजाक करता है और शोरगुल करता है, बहुत बड़ी आग लगाता है, किंतु उसका कोलाहल कुछ ही पलों में बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। वस्तुतः जीवन की खुशियां भी ऐसी ही होती हैं, वे शोरगुल वाली, दिखावटी और कुछ समय के लिए होती हैं। बाइबल आचार्य फॉन ट्रैप लिखते हैं, उनकी हंसी की तुलना कांटों से भी की जा सकती है, क्योंकि यह नेक इच्छाओं को दबा देती है, जमीर को खरोचती हैं, बुरी और बेकार इच्छाओं के कीड़ों को पनाह देती है। आगे उपदेशक कहता है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बना देता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है। किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से अच्छा है। आसानी से उत्तेजित मत हो, क्योंकि मूर्खों के हृदय में क्रोध का निवास है। श्रोताओ, अवश्य ही अत्याचार, अनाचार और जुल्म एक प्रज्ञावान और समझदार इंसान की समझ को खत्म कर देता है, क्योंकि दुख सहने की भी हद होती है। यह एक समझदार इंसान की समझ को खत्म कर सकता है। वह मजबूर होकर भ्रष्टाचार के आगे झुकने लगता है, जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठता है। उपदेशक कहता है कि किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है और धैर्य अहंकार से बेहतर है। इस प्रकार श्रोताओं, सहन शक्ति और सब्र की तारीफ करने वाले दो पदों के बाद उपदेशक हमें बेसब्री से नाराज होने के खिलाफ भी चेतावनी देता है। दुनियावी सोच के साथ जीने से इंसान आसानी से बेसब्र हो सकता है, नाराज हो सकता है, क्रुद्ध हो जाता है, किंतु क्रोध करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध करना मूर्खों के दिलो दिमाग की उपज है। और फिर उपदेशक 10 से लेकर 12 तक के पदों में प्रज्ञा को मानव की अनमोल विरासत निरूपित करता है। यह मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे, इस प्रकार का प्रश्न उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं है। प्रज्ञा विरासत की तरह अच्छी बात है, इससे सूर्य देखने वाले लाभ उठाते हैं। प्रज्ञा और धन दोनों मनुष्य की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह ज्ञानी को जीवन प्रदान करता है। श्रोताओं, प्रायः हमारा झुकाव अतीत को याद करने और उस पर रोने धोने का ही रहा है, और सुलेमान इस बात को अच्छी तरह समझ गया था। वह समझ गया था कि मनुष्य को अक्सर बीता हुआ कल रोमांचक लगता है, और वह कहने लगता है कि वह समय आज के समय से बेहतर था। इसी के खिलाफ उपदेशक चेतावनी देता है, क्योंकि यदि हम केवल अपने अतीत के बारे में सोचते रहेंगे तो अपने वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और भविष्य के लिए कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसके विपरीत वर्तमान की परवाह की जाए, वर्तमान की नींव पक्की की जाए, ताकि भविष्य का महल उस पर खड़ा किया जा सके। इसी में प्रज्ञा है, यही प्रज्ञावान की रीति है। उपदेशक का परामर्श है कि हम धन का सदुपयोग करें, क्योंकि जीने के लिए धन भी आवश्यक है। प्रज्ञा यानी कि विवेक और बुद्धिमानी से जीवन जिए तथा हर पल ईश्वर की महिमा का गुणगान करें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने 7 मई को पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की, जिन्होंने बाद में क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन और वैटिकन विदेश सचिव महाथमदस पॉल रिचर्ड गलाघा से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वैटिकन में हुई यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। प्रेस विज्ञप्ति में आगे कहा गया कि देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्थानीय कलीसिया एवं राज्य के बीच संबंधों पर भी ध्यान दिया गया, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और नैतिक मुद्दों के संबंध में। अंततः बतलाया गया कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पोप लियो 14वें ने गुरुवार को वैटिकन में वैटिकन पब्लिशिंग हाउस के संपादक के कार्यालय के सदस्यों से मुलाकात की और उनकी सेवा एवं विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस लाइब्रेरिया एडिट्रिचे वतिकाना के शतवर्षीय जयंती के अवसर पर पोप लियो ने सदस्यों से मुलाकात की, जो 1926 में 1587 में बने पुराने वैटिकन पब्लिशिंग हाउस से अलग हो गया था। संत पापा ने सदस्यों को संबोधित कर कहा, अपने 100 साल के इतिहास में वैटिकन पब्लिशिंग हाउस ने 9 संत पापाओं की सेवा की है और उनकी धर्म शिक्षाओं को दुनिया भर में सुसमाचार का प्रचार करने हेतु योगदान देने के रूप में फैलाया है। संत पापा ने इस अवसर पर उन्हें 3 बातें बतलाई। पहला, संत पापा ने कहा, किताबें सोचने का मौका देती हैं। डिजिटल जमाने में किताबों का असल रूप हमें सोचने, चिंतन करने और पढ़ाई की भूमिका की याद दिलाता है। पढ़ने से दिमाग को पोषण मिलता है। यह एक जागरूक एवं जानकारी भरी आलोचनात्मक समझ को बढ़ावा देने में मदद करता है तथा कट्टरपंथ एवं सोच के सहज रास्ते से बचाता है। इसलिए संत पापा ने सभी को किताब पढ़ने की सलाह दी ताकि यह उस छोटी सोच को तोड़ दे जिससे सख्त रवैये और असलियत को कम समझने वाले नजरिए उत्पन्न होते हैं। पोप लियो के अनुसार किताब मिलने जुलने का मौका है। जब हम कोई किताब अपने हाथ में पकड़ते हैं तो हम उसके लेखक से मिलते हैं, लेकिन साथ ही हम उन लोगों से भी मिलते हैं जिन्होंने इसे हमसे पहले पढ़ा है या जो इसे पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, पोप फ्रांसिस ने हमें मिलने जुलने की संस्कृति को अपनाना सिखाया है। किताब दूसरों के लिए एक पुल है, अच्छी चर्चा का जरिया है और हमारे दृष्टिकोण को बड़ा करने के लिए एक प्रेरणा है। पोप ने अपने संदेश के तीसरे बिंदु के रूप में बतलाया कि हम ख्रिस्तियों के लिए किताबें मसीह के बारे में बताने का एक मौका है। उन्होंने कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी संत की जीवनी या अच्छी तरह से लिखा गया आध्यात्मिक चिंतन दिल को छू सकता है। कुंवारी मरियम को देवदूत के संदेश के समय उन्हें पौत्र धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए दिखाया गया है। पादवा के संत अंतोनी सुसमाचार की खुली किताब पकड़े हुए हैं जिस पर बालक येसु खड़े हैं। हम अक्सर संत अगस्टीन को एक बड़ी किताब के सामने मेज पर बैठे हुए देखते हैं और कभी कभी उनके हाथ में एक दिल होता है जो सच्चाई और दान का प्रतीक है। अतः संत पापा ने सलाह दी कि कुंवारी मरियम और संतों से सीखते हुए हम खुद को ईश्वर के वचन से पोषित करें ताकि यह हमारी सोच और हमारे कामों को आकार दे। संत पापा पॉल सिस्टम के शब्दों में संत पापा ने सदस्यों को आगे बढ़ने, भविष्य के लिए विचार करने और प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में उन्होंने उन्हें उनके कामों के लिए धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं दी कि वे इसे पूरी लगन एवं जुनून के साथ जारी रखें तथा उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। पोप लियो 14वें 8 मई को अपने पोप बनने के पहले सालगिरह पर पोम्पे एवं नेपल्स का दौरा कर रहे हैं। इस पर अपनी खुशी एवं शुक्रिया अदा करते हुए पोम्पे के महाधर्माध्यक्ष थोमासो कपूतो ने कहा, संत पापा का अपने पोप बनने के पहले सालगिरह को मनाने के लिए पोम्पे आना एक बहुत खास उपहार है जिसका हम दिल से स्वागत करना चाहते हैं ताकि हमारा समुदाय और भी अधिक रोशनी की जगह, प्रार्थना का स्कूल एवं शांति का किला बन सके। इटली के नेपल्स एवं पोम्पे में पोप के एक दिवसीय दौरे से पहले वैटिकन न्यूज से बातें करते हुए पोम्पे की रोजरी की माता मरियम के तीर्थ स्थल के लिए परमधम पीठ के प्रतिनिधि ने विश्वासियों के जोश एवं खुशी भरे इंतजार के बारे बतलाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि आयोजकों को हर जगह से हिस्सा लेने के लिए अनगिनत आग्रह किए जा रहे हैं।
जिनमें से कई दुर्भाग्य से कम जगह के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। पोप लियो का दौरा मार्च 2015 में पोप फ्रांसिस की पोम्पे की तीर्थ यात्रा के 11 साल बाद हो रहा है। शहर का दौरा करने वाले पहले पोप 1979 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय थे, जो 2003 में फिर से लौटे थे, और पोप बेनेडिक्ट 16वें ने भी 2008 में कुंवारी मरियम की तस्वीर के सामने प्रार्थना की थी। 6 मई को पोप लियो 14वें स्विस गार्ड में भर्ती 28 नए गार्डों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और वैटिकन में स्विस गार्ड के कामों के लिए अपना सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। बुधवार को 28 नौजवानों ने स्विस गार्ड में भर्ती होने के लिए वफादारी की शपथ ली। अपने भाषण में गार्ड के कमांडर क्रिस्टोफ ग्राफ ने पोप लियो 14वें की उपस्थिति के लिए अपना आभार जताया और इससे सैन्य दल के साथ उनकी नज़दीकी का एक अनमोल संकेत बताया। वैटिकन के संत पॉल सभागार में हुए समारोह के अंत में पोप लियो 14वें ने एकत्रित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने स्विस परिसंघ के अध्यक्ष एवं राजनीतिक नेताओं तथा सेना के दूसरे प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिवादन किया। फिर गार्डों के परिवारों को समारोह में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और नए शपथ लेने वालों के प्रति अपना सम्मान एवं आभार जताया। पोप ने जोर दिया कि उन्होंने जो शपथ ली है वह उस वफादारी का सबूत है जो जवानी के जोश, ईश्वर में विश्वास और कलीसिया के लिए प्यार से उत्पन्न हुई है। समारोह के शुरू में कमांडर क्रिस्टोफ ग्राफ ने सेवा की आज की समझ पर चिंतन किया और एक अहम दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि आज इस शब्द को अक्सर एक खोखला शब्द समझकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है या इसे निजी संतुष्टि में रुकावट के तौर पर भी देखा जाता है। उन्होंने इस समझ के लिए यीशु के शब्दों को आदर्श बतलाया, जो सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आए थे। ग्राफ ने कहा कि यह ख्रिस्त उदाहरण घमंड और अधिकार के स्वार्थ इस्तेमाल से बचाता है। जो लोग सेवा करते हैं उन्हें पता रहता है कि वे जिनकी सेवा करते हैं उनसे ऊपर नहीं होते। ग्राफ ने कहा कि स्विस गार्ड्स के लिए इसका मतलब है कि वे पूरी ताकत से संत पिता का साथ दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे,

0: अमृत होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
2: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है इटली के पोम्पेई और नेपल्स में संत पापा लियो की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें ने 8 मई 2026 को अपनी परमाध्यक्षीय नियुक्ति की पहली वर्षगांठ पर पोम्पेई और नेपल्स की प्रेरितिक यात्रा की। 8 मई 2025 को अगस्टीनियन धर्म समाज के पुरोहित फ्रांसिस प्रेवोस्ट लियो 14वें नाम ग्रहण कर विश्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इस प्रेरितिक यात्रा के लिए संत पापा लियो 14वें रोम समय अनुसार शुक्रवार प्रातः 8 बजे वैटिकन के हेलीपैड से रवाना हुए। प्रातः 10 बजे वे पोम्पेई के मरियम तीर्थ पहुंचे, जहां पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपुतो ने संपूर्ण महाधर्म प्रांत की ओर से उनका स्वागत किया तथा उनके आगमन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कलीसिया के धर्माधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक एवं नागर अधिकारी भी उपस्थित थे। मरियम तीर्थ पर सर्वप्रथम संत पापा ने यहाँ सेवारत धर्म समाजी और धर्म संघी स्त्री पुरुषों एवं याजक वर्ग से मुलाकात की। तदोपरांत उन्होंने पोम्पेई पुण्य स्थल के लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनके नेक कार्यों के लिए प्रभु ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शुक्रवार 10:30 बजे संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई में रोजरी माला की धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित पुण्य स्थल के निकट संत बार्थोलो प्रांगण में ख्रीस्त्याग अर्पित किया। पोम्पेई में मरियम तीर्थ के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के संत बार्थोलो का शव भी सुरक्षित रखा गया है, जो पहले एक शैतानी पुजारी थे किंतु मन परिवर्तन के बाद जिन्होंने कैथलिक धर्म में शरण पाई और उसका आलिंगन कर लिया था। शुक्रवार मध्यान्ह संत पापा लियो ने पोम्पेई की मरियम से पारंपरिक प्रार्थना का पाठ किया तथा उपस्थित हजारों तीर्थयात्रियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

संत पापा लियो 14वें ने पोम्पेई के त्रापानी भवन में शुक्रवार को मरियम स्थल से जुड़े लोकोपकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जरूरतमंदों के प्रति उनके नेक कार्यों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। इनमें धर्म समाजी और धर्म संघी पुरोहितों एवं धर्म बहनों, शिक्षकों और स्वयं सेवकों के प्रतिनिधि शामिल थे। उदारता के कार्यों में संलग्न प्रतिनिधियों का अभिवादन कर संत पापा ने कहा कि वे उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने पोम्पेई के महाधर्माध्यक्ष तोमासो कपूतो द्वारा उनके स्वागत में कहे शब्दों के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि संत बार्तोलो के पद चिन्हों पर अपनी पोम्पेई यात्रा की शुरुआत करना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, जिन्हें उन्होंने विगत वर्ष 19 अक्टूबर को संत घोषित कर कलीसिया में वेदी का सम्मान प्रदान किया था। संत पापा ने स्मरण कराया कि संत बार्थोलो पोम्पेई घाटी को प्रेम की एक ऐसी जगह बताते थे जो दिल को खुश कर देती है, विश्वास और उदारता के विजय का स्थल, जिन्हें उन्होंने एक ही उड़ान में जुड़े हुए दो पंख निरूपित किया था। संत पापा ने कहा कि यह वास्तविकता अभी भी बहुत जीवित और स्पष्ट है। यहाँ इस मरियम तीर्थ पर प्रतिदिन के कार्यों में प्रभु येसु ख्रीस्त के फिर से जी उठने की ताकत महसूस की जा सकती है, जो प्रेम पूर्वक सुसमाचार के उत्तम जीवन के लिए दिलों को फिर से जिंदा करती है। यहाँ उन्होंने कहा, उदारता का मंदिर और विश्वास का मंदिर एक दूसरे को समर्थन देते हैं। संत पापा ने पोम्पेई तीर्थ स्थल द्वारा संचालित कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, प्रार्थना स्वागत सत्कार प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्रों, परिवार घरों तथा संत पापा फ्रांसिस के नाम पर बने सूप किचन में इतने सारे लोगों के स्वागत, प्रेम, सेवा और दिल खोलकर काम करने को प्रेरित करती है, तथा प्रेम उन लोगों के अंगों में जो दुख झेलते हैं और उससे भी अधिक उनकी आत्माओं में ऐसे चमत्कार करता है जो हर कोशिश और उम्मीद से कहीं अधिक बढ़कर होते हैं। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि जब संत बार्थोलो पहली बार पोम्पेई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत गरीबी थी, मलेरिया फैला था तथा डाकुओं का आतंक था। फिर भी उन्होंने हर किसी में यीशु मसीह का चेहरा देखा, युवाओं और वयोवृद्धों में और खासकर अनाथों और कैदियों के बच्चों में, जिन्हें उन्होंने अपनी कोमलता से ईश्वर के दिल की धड़कन महसूस कराई। संत पापा ने याद किया कि जो लोग बार्थोलो से कहते थे कि उनके युवाओं की नियति भी उनके माता पिता जैसी होती है, तो उनका जवाब था कि प्रेम सबसे मुश्किल बच्चों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और हर कोशिश में केवल उदारता ही विजय को सुनिश्चित कर सकती है। संत पापा ने कहा कि वे सही थे और अपने विश्वास और लगन से उन्होंने इस स्थल को ख्रिस्तीय जीवन और मरियम भक्ति का एक विश्व विख्यात स्थल बना दिया। संत पापा ने कहा कि इन सब नेक कार्यों का आधार थी प्रार्थना और विशेष रूप से रोजरी माला विनती, जिसे इस पवित्र जगह और शहर की नींव में एक निशान के तौर पर रखा गया है। यह वह छिपा हुआ इंजन है जो बाकी सब कुछ को मुमकिन बनाता है। अस्तु, उन्होंने कहा, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस प्राचीन और खूबसूरत भक्ति को हमेशा जीवित रखें और इसका प्रसार करें, जिसके माध्यम से हम मरियम की सीधी और माँ स्वरूप आँखों से येसु के जीवन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हैं, जैसा कि संत जॉन पॉल द्वितीय अपने प्रेरितिक पत्र रोजारियम विर्जिनिस मरिये में लिखते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है वह हमारे दिलों में उतरता है और हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता है। संत पापा लियो ने सभी को आमंत्रित किया कि वे माँ मरियम से तथा संत बार्थोलो से जुड़े रहें तथा इस विश्वास के साथ संपूर्ण मानवता को मरियम के संरक्षण के सुपुर्द करें कि उनकी कृपा से कोई भी चीज हमें अच्छा करने से नहीं रोक पाएगी तथा यहाँ और हर जगह शांति के भविष्य की हमारी उम्मीद पूरी होगी।

0: संत पापालियो 14वें पोम्पेई में उदारता के मंदिर में प्रतिनिधियों और तीर्थस्थल के उदार कार्यों में हाथ बटाने वालों से मिलने और संदेश देने के बाद खुली कार से शहर का दौरा करते हुए सुबह 10 बजे बार्तोलो लोंगो प्रांगण पहुंचे। पौत्र मिसा के लिए तैयार वेदी के सामने संत पापा ने वहां उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए कहा, आप सबको शुभ प्रभात, आपकी मौजूदगी के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम पवित्र मिसा समारोह मनाएंगे। येसु ख्रिस्त और युखरिस्त के साथ यह खूबसूरत मुलाकात। येसु हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे करीब, और यहाँ इस तीर्थालय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी माँ हमेशा हमारे साथ है। हमारी माँ मरिया अपने बच्चों के साथ हमेशा हमारे साथ हैं। आप सबको धन्यवाद, जल्द ही पवित्र मिसा में मिलते हैं। इतना कहने के बाद संत पापा गिरजाघर के अंदर गए। तीर्थालय में प्रवेश द्वार पर रेक्टर मोनसिन्योर पास्क्वाले ने संत पापा का स्वागत किया। संत पापा गिरजाघर में प्रवेश कर वहां उपस्थित बीमार और विकलांग लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। बेदी के पास पहुंचकर संत पापा ने उनसे कहा, आप सभी को शुभ प्रभात, येसु ख्रिस्त की जय हो। कितना खूबसूरत दिन है, आज प्रभु ने हम सबको कितनी दुआएं दी हैं। मैं खुद को सबसे पहले धन्य महसूस करता हूं कि मैं इस साल गिरह पर प्रार्थना के दिन हमारी माता के तीर्थालय में आ पाया हूं। यहां आने के लिए आप सबको धन्यवाद। उसके बाद संत पापा ने पौत्र संस्कार के सामने कुछ देर मौन प्रार्थना किया और तीर्थस्थल के संस्थापक संत बार्तोलो लोंगो को समर्पित प्रार्थनालय गए। उनके पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रार्थना किया। इसके बाद संत पापा मेलजोल चैपल में तीर्थस्थल के पुरोहितों से मुलाकात किए। कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे संत पापा लियो ने बार्तोलो लोंगो प्रांगण में ख्रिस्त्याग समारोह शुरू किया।
1: संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा,
2: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine.
1: ठीक एक साल पहले जब मैंने संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी की प्रेरिताई शुरू की, यह पोम्पेई की पवित्र कुमारी से निवेदन रोजरी प्रार्थना का दिन था। यही कारण है कि मैं यहाँ आता हूँ अपनी सेवा को पवित्र कुमारी के चरणों में अर्पित करने हेतु। उन्होंने कहा, लियो के नाम का चुनाव करते हुए मैं संत पापा 13वें के पद चिन्हों का अनुसरण करता हूँ, जिन्होंने अन्य भक्तियों के अलावे रोजरी माला के धर्म सिद्धांत का विकास किया। आनंद के सुसमाचार की घोषणा हमें उस परिस्थिति से वाकिफ करती है जब ईश्वर का वचन मरियम के गर्भ में देह धारण किया। उस गर्भ से वह ज्योति प्रस्फुटित होती है जो इतिहास और दुनिया को संपूर्ण अर्थ प्रदान करती है। स्वर्गदूत गाब्रियल के द्वारा कुमारी मरियम को दिया गया अभिवादन आनंदित होने का निमंत्रण है। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, संत पापा ने कहा, हाँ प्रणाम मरिया, हमारे लिए आनंदित होने का एक निमंत्रण है। यह मानवता की विध्वंस परिस्थिति में जहाँ हम पाप के कारण शोषण सतावट और युद्धों को पाते हैं, ईश्वर की करुणा हमारे लिए येसु ख्रिस्त के रूप में आती है। मरियम हमारे लिए करुणा की माता बनती हैं। संत पापा ने कहा, मरियम के हाँ में ना केवल येसु का जन्म होता है बल्कि कलिस्से के जन्म को भी हम देखते हैं, और मरियम इस भांति ईश्वर की माता थियोटोकस और कलिस्से की माता दोनों बन जाती हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक अद्वितीय रहस्य है। हम सारी चीजों को पवित्र आत्मा की शक्ति में पूरा होता पाते हैं जो मरियम पर उतरती और उनके कुंवारे गर्भ को फलहित करते हैं। इतिहास का यह क्षण अपने में अति सुंदर और शक्तिशाली है जो हृदयों को आकर्षित करता और इसी पवित्र रोजरी प्रार्थना की उत्पत्ति में अपनी चरम प्रदान करता है। प्रणाम मरियम, रोजरी में इस प्रार्थना को दोहराना स्वर्गदूत के संबोधन को प्रतिध्वनित करता है जो सदियों तक फैली है और विश्वासियों की निगाहों को यीशु की ओर बनाए रखती है, जहां हम माँ की आंखों और निगाहों को पाते हैं। रोजरी बिनती के रहस्यों में यीशु की आराधना हम मनन चिंतन करते हैं। रोजरी बिनती के दौरान ईश वचन की घोषणा के बाद हे पिता हमारे और त्रित्व में ईश्वर के महिमा के बीच में प्रणाम मरियम की बारंबारता प्रेम के कार्य को प्रकट करता है। प्रेम का कार्य जिसे हम मरियम के इस तीर्थ स्थल के चित्रकारिता में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जो हमें यीशु की ओर अग्रसर करता और यूखरिस्त की ओर लेकर आता है, जो हमारे ख्रिस्तीय जीवन का स्रोत और चरम सीमा है। हमारी दैनिक प्रार्थना कलिसियाई आराधना है, तो रोजरी हमारे जीवन की लय को व्यक्त करती है, जो हमें निरंतर यीशु और यूखरिस्त की ओर लेकर आती है। संत पापा ने कहा, हर प्रणाम मरियम की प्रार्थना में हम नाजरेत के घर का अनुभव करते हैं, जहां यीशु मरियम और योसेफ के संग रहे। हम अंतिम व्यारी की कोठरी का भी अनुभव करते हैं, जहां मरियम प्रेरितों के संग पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा करती हैं। रोजरी हमारे लिए सुसमाचार की पूर्णता को व्यक्त करती है, जिसमें संत पापा जोन पावल द्वितीय ने प्रकाश के भेदों को जोड़ते हुए पूरा किया। संत पापा जोन पॉल द्वितीय रोजरी के साल की घोषणा करते हुए पोम्पेई कुमारी मरियम को एक विशेष महत्व देना चाहते थे। तब से समय बेहतर नहीं हुआ है। दुनिया के कई इलाकों में अब भी जो युद्ध लड़े जा रहे हैं, वे न सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर निष्ठा की मांग करते हैं।
2: Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
1: भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा, दुनिया को कोई भी दुनियावी ताकत नहीं बचा सकती है, बल्कि सिर्फ प्रेम की दिव्य ताकत ही बचा सकती है, जिसे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया और दिया है। आइए हम उन पर विश्वास करें, उनसे उम्मीद रखें, आइए हम उनका अनुसरण करें।
0: पवित्र मिसा के अंतिम आशीर्वाद से पहले संत पापा और विश्वासियों ने मिलकर पोम्पेई की रोजरी की माता मरियम से प्रार्थना की। इसके बाद पोम्पेई के धर्माध्यक्ष तोमासो कापुतो ने संत पापा लियो को पवित्र मिसा का अनुष्ठान करने और इस पवित्र दिन में तीर्थालय आकर उनके लिए प्रार्थना करने हेतु सभी विश्वासियों के नाम पर धन्यवाद दिया। पवित्र मिसा के बाद संत पापा ने पोंटिफिकल प्रतिनिधि मंडल के सहयोगियों का अभिवादन किया और करीब 1 बजे मरियाना डी फुस्को हॉल में संत पापा लियो धर्माध्यक्षों पुरोहितों और धर्म संघियों के साथ दोपहर का भोजन किया। कुछ देर आराम करने के बाद संत पापा लियो दोपहर 3 बजे हेलीकॉप्टर से नेपल्स के लिए रवाना हुए और 15 मिनट की यात्रा के बाद संत पापा नेपल्स पहुंचे, जहां नेपल्स के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल डोमेनिको बतालिया और वहां के सिविल अधिकारी ने संत पापा लियो का स्वागत किया। नेपल्स के महागिरजाघर के सामने संत पापा लियो 14वें का स्वागत बच्चों का एक बड़ा दल किया। अंदर जाने के बाद संत पापा सबसे पहले पवित्र संस्कार की आराधना के लिए संत जेनारो के प्रार्थनालय में प्रवेश किए और ऊंची वेदी जहां संत जेनारो के खून की शीशियों वाली मूर्ति और पवित्र अवशेष का दर्शन किया। कुछ देर प्रार्थना करने के बाद महाधर्म प्रांत के पुरोहितों और धर्म संघियों से मिलने के लिए महागिरजाघर गए। महागिरजाघर में संत पापा लियो महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों पुरोहितों धर्म संघियों धर्म बहनों को संबोधित करते हुए कहा, कला और संस्कृति से इतने समृद्ध भूमध्य सागर के बीच बसे इस शहर में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जहां इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद अनोखे और खुश मिजाज लोग रहते हैं। मेरे पूर्ववर्ती संत पापा फ्रांसिस 2015 में आए थे और उन्होंने कहा था, नेपल्स में जिंदगी कभी आसान नहीं रही, लेकिन कभी दुखद भी नहीं रहा। यही आपका सबसे बड़ा संसाधन है, खुशी और उत्साह। आज मैं भी खुशी से भर जाने के लिए यहाँ आया हूँ। संत पापा ने कहा कि दोस्ती और भाईचारे की इस भावना के साथ वे एक छोटी सी बात साझा करना चाहते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि ये उनके जीवन यात्रा में समर्थन और हिम्मत देगी और कलीसियाई एवं प्रेरितिक जीवन के लिए काम आएगी। संत पापा ने कहा, जब वे एम्माउस के रास्ते पर दो शिष्यों की कहानी सुनते हैं तो दिल में एक शब्द गूंजता है, देखभाल। उन दो शिष्यों की तरह हम भी अक्सर अपनी यात्रा पर चलते रहते हैं, इतिहास के संकेतों को समझ नहीं पाते। हम अपने दिल में दुख और कड़वाहट महसूस करते हैं, हालांकि यीशु हमारे साथ खड़े हैं और हमारे साथ चलते हैं, हमें एक नई रोशनी दिखाने के लिए हमारे साथ चलते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति का मनोभाव है जो परवाह करता है। आप डरे नहीं, निराश ना होवे और कलीसिया एवं इस शहर के लिए मसीह के गवाह बने और भविष्य के बीज बोएं। इसके बाद संत पापा महागिरजाघर से निकलकर नेपल्स के केंद्रीय चौक पियासा देल प्लेबिशितो जाएंगे, जहां शाम 5:15 बजे विश्वासियों से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद वे सिविल और धार्मिक अधिकारियों के साथ मिनिम्स समुदाय से भेंट करने के लिए सन फ्रांसिस्को दी पाओलो महागिरजाघर जाएंगे। संत पापा लियो 14वें पियासा देल प्लेबिस्तो में नेपल्स के लोगों से मिलेंगे और शहर को संबोधित करेंगे। सभा के अंत में कुंवारी मरियम को इसके प्रतिष्ठान की 200वीं सालगिरह के मौके पर प्रांगण में लाया जाएगा और संत पापा लियो 14वें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद देंगे। इसके बाद संत पापा रोतोंदो दियाज जाएंगे, जहां से वे 6:45 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए रवाना होंगे। श्रोताओं, वाटिकन रेडियो से आज का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।